हरिदस्वसहस्रार्चिः सप्तः सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरोस्त

युद्धाय समुपागमतु सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतो भवतु अधरविरद निरीक्ष राममुदितमनापर